दोस्तों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में. मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश. और जी हाँ, आप ये तो शनिवार है तो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग देमसेल्व्स. और क्रश से आप हमें सुन रहे हो फ्रीक्वेंसी 96.9 प्लेन्स मीडिया से. और

0: अगर बाहर देखते तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है बट इट हैज़ बीन अ वेरी गुड डे. काफ़ी बढ़िया था आज यहाँ क्राइस्टचर्च का माहौल. और जी हाँ, ये जो शो है आज जो हम लाए, हमारा 700th शो है ऑन प्लेन्स मीडिया. और शुक्रिया करना चाहेंगे साहिल हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी विद पैनलिंग टुडे. और साथ साथ में जो लोग बाद में हमें जो फेसबुक में देखेंगे, वी विल ट्राई टू स्विच ऑन टू फेसबुक इन से अनदर 5 मिनट्स ऑल्सो. तो हमारे साथ में शिवनील आ चुके हैं स्टूडियो एंड ही विल बी हेल्पिंग अस विद द लाइव वीडियो. और जैसे हमारे पास ज्यादा करके गेस्ट रहते हैं, और इस बार वी आर गोइंग टू वेलकम नेहा शर्मा जी और शेखर किशोर जो बहुत पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियो में, उसे हम बात करते चलेंगे. और आज जो विषय है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं व्यंगम योग. और एक इवेंट भी आ रहा है इसको लेकर, इसके विषय में हम बात करेंगे कब आ रहा है और उसकी जो जानकारी ये हमें नेहा और शेखर देने वाले हैं. और शेखर एक्चुअली इज कम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उससे हम बात करते चलेंगे. और जो लोग खेल कूद की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं, तो ऑफकोर्स ऑल द is a fan. Congratulations, I'm kahenge, and I'm sure you are quite over the moon beating Chiefs. I don't know what was your thoughts, Sahil?
1: It was a very, very interesting and close game. It had gone either way, 36-32 score line run, and last minute, like, it was interesting. It could have gone either way.
0: Yeah, bilkul. Well, prediction was a bit tight this time. I'm sure many people would not have been able to predict because both teams are very strong.
1: First half, Chiefs were winning.
0: Yep.
1: And then it was going backwards and forth. There was no clear winner ki kaun jeetega.
0: जी हाँ. और हम क्या करेंगे कि जो हम इंटरव्यू करने वाले हैं, हम जब बात करेंगे नेहा जी से और शेखर से, उससे पहले हम एक गीत सुनेंगे, उसके बाद में हम अपना जो इंटरव्यू जारी करेंगे. और इंटरव्यू के बाद में वी आर गोइंग टू प्ले, जैसे लास्ट टाइम हमने जो प्ले किया था हमारे जो लास्ट शो में था, आवर इंटरव्यू विद मिनिस्टर टोड मेकले, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के विषय में हम बात कर रहे थे बिटवीन ओबियसली न्यूजीलैंड एंड इंडिया, जो अभी हाल ही में जो साइन हुआ है उसका जो हम ज़्यादा करके जो पॉजिटिव साइड आपने सुने होंगे. और इस बार भी में हमें मौका मिला बात करने, हमने बात की है मीगन वुड से जो लेबा के जो स्पोक्स पर्सन थे, और हमने वही उसी विषय पे बात किया जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है. और जैसे हम न्यूज़ में सुन रहे थे कि लेबा डिड कम ऑन बोर्ड बिकॉज ऑब्वियसली देयर सपोर्ट वाज नीडेड, लेकिन दैट टुक अ बिट ऑफ टाइम, और मे बी दैट कुड हैव बीन सम कुछ इश्यूज जो कुछ अब हमने बातें की हैं. और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला जो शायद हमें पहले नहीं पता था, लाइक डेफिनेटली मुझे नहीं पता था, एंड आई वॉज वेरी कीन इंटरेस्टेड. और तो मीगन वुड्स ने काफ़ी कुछ जो क्लेरिफाई किया है, तो वो वीडियो भी हमारे पास है जो साहिल विल प्ले इन द लास्ट काइंड ऑफ 15 मिनट्स. सो डोंट गो एनीवेयर, आप सुन सकते हो ऑन फ्रीक्वेंसी, दो हमारा जो लाइव है जो फेसबुक तो बंद हो जाएगा, बट ऑन फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट इंटरव्यू. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इस शो को लेकर. सो आई लास्ट साहिल इफ यू कुड प्ले वन म्यूजिक, एक गीत हमें सुना था. क्या होता है अक्सर जो गीत मिस हो जाते हैं हमारे जो इंटरव्यूज जब भी होता है, और ऑफकोर्स हम स्पोर्ट्स न्यूज भी कभी कभी मिस करते थे, वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू यू एज मच एज वी कैन. अदरवाइज हम ज्यादा कि जो अपने जो पेज है जलसा फीजी रेडियो पेज है फेसबुक पे, उस पर हम पोस्ट कर देते हैं. तो चलो साहिल हम गीत सुनते हैं, एंड देन वी विल टॉक टू आवर गेस्ट्स.

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of GoWise Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों साथियों, आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सेल लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ वंस अगेन प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और मेरे साथ पैनलिंग में साथ दे रहे हैं साहिल। और जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उन जलसा फिजी रेडियो फेसबुक लाइव, तो हम शिवनील को धन्यवाद देंगे फॉर टेकिंग आउट इस टाइम और हमें हेल्प करने के लिए। तो चलो, हमने जैसे शुरू में मेंशन किया था कि आज हमारा जो विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा जिसके विषय में आज बात करने वाले हैं, वह है विहंगम योग। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के गेस्ट नेहा शर्मा जी और साथ में शेखर किशोर। आई हैव मेट एक्चुअली नेहा बिफोर एज वेल, और बात भी पहले भी हुई है, एंड शी इज़ प्रीटी मच एक्साइटेड। जो एक इवेंट आ रहा है क्रशेश में, जिसके विषय में ज़्यादा करके हम सुनेंगे फ्रॉम नेहा एंड शेखर। और शेखर एक्चुअली केम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो आप आए हो, स्वागत करेंगे क्रशेश में। होप करते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड तो आपके लिए नहीं था आज तो आई थिंक वेदर उतना बुरा नहीं था, सो यू शुड बी डूइंग वेल। तो चलो हम शुरू करते हैं नेहा आपके साथ में, तो आप बताइए कि आज आपका दिन कैसा बीता?
1: आज बहुत ही अच्छा दिन रहा मेरा, क्योंकि हमने बहुत सारी कम्युनिटी से मिलके इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। विहंगम योगा इवेंट फॉर इनर पीस, इट इज़ गोइंग टू कम इन 26th ऑफ सितंबर, एंड ये प्रोग्राम होने वाला है टेम्पलटल कम्युनिटी सेंटर में। और इसका मेन मोटिव ही ये है कि हम कैसे मेडिटेशन को अपनी लाइफ में बिल्ड कर सकें और उससे कैसे इनर पीस पा सकें। और शेखर जी इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में एंड देन सिंगापुर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है।
0: जी हाँ शेखर जी, तो आप बताइए और इस प्रोग्राम के विषय में।
2: सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि आज हम विहंगम योग के विषय में बात कर पा रहे हैं। क्राइस्टचर्च में जैसे आपने पूछा कैसा लगा, प्रीटी मच सिमिलर है वेदर जैसा सिडनी में था, थोड़ा सा ठंड है, बट क्राइस्टचर्च का एक अपना एक अलग आनंद है, खुली खुला शुद्ध।

0: वातावरण है यहाँ पे, और मुझे तो यहाँ आके लगा कि यहाँ पे तो साधन करने वालों के लिए तो सबसे एप्रोप्रिएट जगह है कि यहाँ पे आप ध्यान साधन करें, इतनी खुली वातावरण में, इतना बढ़िया एनवायरमेंट है, तो आपका ग्रोथ तो अच्छा हो गई।
1: जी बिल्कुल, साउथ आइलैंड की अगर बात किया जाए स्पेशली, बिकॉज साउथ आइलैंड इज नोन फॉर दैट, और काफ़ी जो टूरिस्ट है और काफ़ी लोग भी आते भी है फ्रॉम अदर सिटीज़ एंड आई थिंक यूएस वाज मेजर मार्केट एक समय पे, एंड देवर रशिंग कमिंग इन टू न्यूजीलैंड और स्पेसिफिकली फॉर साउथ आइलैंड, बिकॉज यहाँ का उसी तरह वातावरण, एंड आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ दोज ग्रेट प्लेसेस जब हम बात करते हैं विंगम योग के। और अब ये आ गया है आई थिंक कि हम जब बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, और ऐसा नहीं कि ये सीमित हम ही पे है इंडियंस या फ्रॉम इंडिया, अब ये सभी फॉलो करते हैं एंड इट्स फाउंड एवरीवेयर, आप चाहे यूएस चले जाओ चाहे कनाडा, कहीं पे आपको ये मिलता है। और जब बात करते हैं विंगम, सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज इट इज काइंड ऑफ कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड।
0: जी जी, विहंगम शब्द का अर्थ है पक्षी।
1: जी,
0: तो विहंगम योग का कंसेप्ट क्या है, स्वामी जी ने, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने, जिन्होंने 1924 में विहंगम योग की स्थापना की थी, उन्होंने 17 वर्षों तक की कठोर तपस्या करके इस ज्ञान को पाया था कि कैसे एक आत्मा अपनी जर्नी आध्यात्मिक शुरू करता है और संसार में जीते हुए अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए, सारे ड्यूटीज़ को करते हुए, कैसे वो धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और एक बार परमात्मा से एकाकार हो जाता है। तो यहाँ पे स्वामी जी क्या कहते हैं कि जब आपकी आत्मा उस लेवल पे सेटल हो जाएगी तो वो विहंगम पक्षी की तरह उड़ते हुए आत्मा के धरातल पे साधन करके उस परमात्मा को पाएगी। तो विहंगम शब्द का अर्थ एक्चुअली वही है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि योग और योगा दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। योगा जो है वो शरीर का आसन है, शरीर को फिट रखने की तरीके एक तरीका है, प्राणायाम आता है, जैसे हम सभी ने देखा है हमारे जो योग शास्त्र की अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि ने जो हमें अष्टांग योग के विषय में बताया है, तो उसमें क्या क्या है, यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। लेकिन हम सभी सिर्फ योगा में अटक जाते हैं या प्राणायाम में अटक जाते हैं, जबकि ये जर्नी बहुत लंबी है। सो इट इज नॉट दैट पीपल डोंट वॉन्ट टू डू, इट इज मे बी पीपल हैव नॉट फुली कंसेप्चुलाइज्ड इट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट। और योग क्या होता है, योग जैसे विहंगम योग हम कहते हैं, हम योगा नहीं कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, योग के विषय में स्वामी जी ने कहा है, योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। इसका मतलब क्या है कि योग शब्द का अर्थ क्या है, जोड़, दो तत्वों का मिलन जो एक जैसी तत्व हो। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व है, उनका मिलन जो है उसको योग कहते हैं। तो ये स्वामी जी ने समझाया है। तो विहंगम योग जो है वो एक साधना की पद्धति है, वो एक ऐसा तरीका है कि संसार में रहते हुए अपने सारे ड्यूटीज़ को पूर्ण रूप से करते हुए और उसको करते करते हम कैसे धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाएं, और वो बदलाव कैसे आएगा, वो शांति हमें कैसे मिलेगी, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, न सुनने से होगा। तो उसके लिए जो साधन का तरीका है वो 10 मिनट की साधना सुबह और 10 मिनट की साधना शाम को, सिर्फ इतना कहने के लिए स्वामी जी सिखाते हैं, और उसके माध्यम से हमारी तरक्की होती है, हम आगे बढ़ते हैं। I hope this gives you a little bit of purpose.
1: Definitely. और जब बात आती है ऐसा कोई सब्जेक्ट की, then definitely, I mean, we can't cover everything today. ये तो obviously बात होती है, we need more time or maybe more sessions ये हम cover करने के लिए, and हम क्या करेंगे, we'll quickly dive into the actual event so that people can actually know and learn, and maybe we would like them to diarize, because कभी ऐसा होता है कि भाग दौड़ में भूल जाते हैं और बाद में हमसे लोग मिलते हैं तब पूछते हैं कि हमने कोई वीडियो देखा था या कहीं पे फोटोज देखा था, हम didn't realize कि उस दिन हो रहा है। हमारे साथ भी हो जाता है, सैटरडे संडे भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि फ्राइडे मिक्स वो कर देते हैं ना हम लोग। तो आप बताइए, जो ये आपने बोला था विहंगम योग मेडिटेशन फॉर इनर पीस, तो ये जो आपका प्रोग्राम है तो ये कब हो रहा है?
2: ये होएगा 26 सितंबर
1: जी,
2: और ये होने वाला है टेंपल टर्न कम्युनिटी सेंटर में
1: जी। इट

0: will be for about 2 to 3 hours, and जिसमें आपको meditation technique सिखाई जाएगी, जिस meditation technique से हम अपना stress manage कर सकते हैं और अपने thoughts में किस तरह से clarity आएगी, like if you do for 10 minutes, how big a difference it can make in your life. So it will be more on to how to manage your stress, how to overcome your overthinking. So it will be very beneficial for everyone. It's not particular to ki Hindu community ke liye hai. It's for everyone and it's for humanity. Vihangam Yoga Sansthan आज भारत में नहीं पूरे 50 countries में फैल चुका है जहां वहां पे not even the like common people, everybody is involved in there. So even in Australia we have got a 2 weeks program. So yeah.
1: जी हाँ, तो जैसे आपने सुना कि ये जो प्रोग्राम है विहंगम योग Meditation for Inner Peace, ये रहेगा 26 September 2026 और Templeton Hall, मेरे ख्याल से that address should be 64 Cake Road, क्यों मुझे याद है, because बहुत ज़्यादा events होता है Templeton में, तो Templeton भी काफी common premises हम कहेंगे, because it is very close to where most of our people are, Hillswell, Wigram, Rolston सभी का नज़दीक हो जाता, काफी central भी है, so आप जा सकते हो Templeton Hall में 26 September, मेरे ख्याल से शाम के समय होगा, हमको होगा और if I'm not wrong is it a free event?
0: Yes, it is a free event.
1: जी हाँ, तो ठीक है, ये free event है जहाँ जा सकते हो, जैसे नेहा ने mention किया है कि अगर आपके neighbours kiwi वगैरह हो या और कभी हिंदू ना भी हो, then you can just bring them along because as मैंने शुरू में बोला था, हमने योग या योगा हम कह सकते हैं, it has a spread और उसपे हम बाद में हम बात करना चाहेंगे कि where did yoga come from because we knew योग तो obviously हमारे संस्कृत शब्द से आया होगा, बट योगा कहाँ से आया, या तो फिर जब हम राम कहते हैं फिर इसमें रामा जुड़ जाता है, तो मैं भी शेखर जी आप काफी आपके पास जो नॉलेज होता है, वी आर गोइंग टू हैव द इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सम अदर डे, बट क्विकली ऑन दिस प्रोग्राम हम जब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो होने जा रहा है 26 सितंबर को, तो ऑब्वियसली आप तो रहोगे ना?
2: जी,
1: आप आ रहे हो, जी आप आ रहे हो, और नेहा आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो जी हाँ, और हमारे जो हमने अभी काफी लोगों से बात की है, हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स या कम्युनिटी से काफी लोग से बात किया है, हम मिले भी थे एक इवेंट में, तो वहाँ भी काफी लोग थे, एंड वी नो दैट ऑलरेडी चर्चा हो रही है हमारे कम्युनिटीज में, सो वी नो कौन कौन लोग अभी से आ रहा है, लेकिन कोई बाहर से कोई ऋषि जी या कोई गुरु जी आ रहे
2: हैं? जी, तो विहंगम योग के जो वर्तमान परंपरा सदगुरु हैं, सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज, वो स्वयं आ रहे हैं, उनके साथ में संत नामदेव जी आ रहे हैं, तो स्वतंत्र देव जी महाराज इस समय हर लिटरली साल में 9 महीने पूरे विश्व में अलग अलग देशों से उनका निमंत्रण आता है, वो वहाँ जाते हैं, इस ज्ञान का प्रसार प्रचार करते हैं, और संत नामदेव जी महाराज हैं वो इंटरनेशनल प्रोपगेशन के वो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारा जो विहंगम योग संस्थान जो है उसका जो एक इतने तरह के हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं समाज की सेवा का एज ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि यूनाइटेड नेशंस के दो बॉडीज़ हैं, इकोसॉक और यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, दोनों ने हमें रिकॉग्निशन दिया है, और संत नामदेव जी उनके भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और उनको तो पूरे वर्ल्ड से जगह जगह से इन्विटेशन आता है, वो जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स पे टॉपिक्स पे बात करते हैं, अभी इसी कार्यक्रम के सीरीज में सिडनी में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें संत नामदेव जी का विशेष दो उनके साथ वर्कशॉप्स रखा गया है वहाँ के, एक तो हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसमें उन्होंने सारे कम्युनिटी लीडर्स को इनवाइट किया है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों, और दूसरा एक हो रहा है जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑल ऑफ दोज आर इन्वाइटेड टू दैट बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज दैट टेक्निक थ्रू विच they can be in that calm zone because they are dealing with the most traumatic situations and they are really absorbing all of that within them. So it's very easy for them to burn out.
1: Yeah, बिल्कुल, because
2: they want to learn.
1: I'm in a law firm, तो हम clients वगैरह से जो deal करते हैं, there was a time जब मैं immigration department में था, उसमें भी application वगैरह कर रहा था. So जब कोई किसी successful हो जाता है, तो बहुत easy होता है ना, phone उठाकर बोल देते हैं कि congratulations, आपका PR आ गया है, आपको visa मिल गया है, and then no, that's a very good discussion होता है. लेकिन वहीं पे जब कुछ rejection आ जाता है, decline आ जाता है, तो फिर कोई ऐसा issue आ जाता है जो हमें discuss करना पड़ता है clients के, और काम करते करते

0: हमारा एक काइंड ऑफ बॉन्ड या रिलेशनशिप बन ही जाता है और काफी लोग तो हमें जानते थे कम्युनिटी से, तो वो डिस्कशन काफी हार्ड होता है. तो ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हाउ यू टेकल दैट. और आप बात कर रहे हो कि जो सेजेंट्स डॉक्टर्स, तो वहां पे तो कुछ भी हो सकता है. एंड देन इफ यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, क्योंकि होता ना हमें गिल्ट आ रहा था कि ये हमारा क्लाइंट था, यू नो मे बी आई फेल्ड हिम, या मैं और कुछ कर सकता था ना कल के भी, तो उसका. और ये जो होता ना जो ट्रेनिंग हर प्रोफेशन में नहीं होता है, एंड समटाइम्स नो पीपल आते काम शुरू कर देते हैं.
1: जी.
0: काम पहले अपने शुरू कर दिया, आपका डिग्री मिल गया और काम करना, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न ऑन द वे. और काफी लोग नहीं कर पाते हैं, एंड एज लोएज आर जो काफी हाई पे स्ट्रेस, आई थिंक पेपर्स में एक दफे आया भी था, देन स्ट्रेस उसका बहुत हाई होता है. तो आई थिंक इफ एनीथिंग कैन हेल्प दैट, अभी तो mental illness is out there. ये नहीं कि पहले नहीं था, बट शायद पहले बात नहीं करते थे ना लोग, डोंट एक्सप्रेस दैट वे. बट अभी तो ठीक है कि at least people are talking about it, तो पता चल रहा है. एंड मे बी नाउ kids are able to come up to their parents and tell them कि this is what I'm going through. बट हमारे समय में तो ऑप्शन नहीं था ना, हम नहीं बोलेंगे, हम खुद लेकर स्ट्रेस चलेंगे. सो विच इज अ वेरी गुड थिंग. और जब हम बात करते हैं ऐसे जो आप बोल रहे recognized organizations, अगर हम बोल रहे कि इतना प्रसिद्ध है, they are recognized and appreciated by you know countries जा रहे हैं, तो do you have any kind of place like कुछ जगह, कुछ premises आप लोगों के पास है?
1: जी, तो इंडिया में हमारे विहंगम योग के 6 मुख्य आश्रम हैं. तो जहाँ पे एक आश्रम है बलिया जिले में, जहाँ स्वामी जी ने गांव में एक मिट्टी की गुफा में अनेक वर्षों तक तपस्या की थी. फिर प्रयागराज में गंगा के किनारे हमारा एक आश्रम है जिसको हम झूसी आश्रम कहते हैं, वहाँ पे स्वामी जी की समाधि भी है. फिर हमारा एक आश्रम है हिमालय में शून्य शिखर पे, जहाँ स्वामी जी ने बैठ के गुफा में बैठ के उस ग्रंथ स्वरवेद का रचना की थी, जिसमें उन्होंने अपने पूरा आध्यात्मिक अनुभव लिख दिया. फिर एक आश्रम है गया में मधुमति आश्रम के नाम से, और एक है गुजरात में दंडक वन में, वो दंडक वन आश्रम उसका नाम ही है. और स्वरवेद महामंदिर जो कि एक अद्भुत कृति है, आज उसके जैसा उसके समान कोई भी मेडिटेशन सेंटर पूरे विश्व में नहीं है.
0: या शेखर जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे पास फोटो जो हम दिखाना चाहेंगे, बिकॉज मैं और साहिल से पहले हम देख रहे थे, साहिल इफ कुंड पुल इट अप, एंड हम भी देख ही रहे थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है.
1: अद्भुत है वो, उसमें 20,000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं. और स्वरवेद महामंदिर के अंदर में पूरे दीवार के ऊपर में सफेद संगमरमर के स्लैब्स लगे हैं, और उन स्लैब्स के ऊपर में स्वरवेद के 3,700 दोहे अंकित किए गए हैं, साथ साथ पुराण के, भागवत गीता से, रामायण से, जहाँ जहाँ ब्रह्म विद्या ज्ञान की चर्चा हुई है उन सब के दोहे उस स्वरवेद महामंदिर के दीवारों पर अंकित हैं. तो ये जो अद्भुत जगह है, यहाँ पे लोग जाते हैं बैठ के ध्यान करने के लिए. और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका ओपनिंग भी श्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, और उसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अब उसे टूरिज्म मैप पे भी डाल दिया है कि जब लोग वाराणसी जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर देखने जाते थे, वो लोग स्वरवेद महामंदिर भी देखने आते हैं. और इस समय पूरा मंदिर खुला भी नहीं है, केवल फर्स्ट फ्लोर खुला है, और हमारा महीने में कम से कम 1.5 लाख लोग इस समय आ रहे हैं वहाँ पे उस मंदिर का दर्शन करने के लिए केवल, क्यों क्या है वो अद्भुत जगह. तो बाहर से तो आप देख रहे हैं पूर्ण हो चुका है, अंदर में तो अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन वो काम चल रहा है धीरे धीरे, वो सब पूर्ण हो रहा है. तो ये जो अद्भुत कृति है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि वहां पे आके सारे ऋषि ऋषिकाओं की मूर्तियां वहां लगी पड़ी हैं, जो हमारे पूर्व संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं. और वहां जाके जब कोई साधन करेगा तो उसे स्वयं अनुभव होगा कि एक योगी की धरा भूमि पे जब साधन करो तो उनके परमाणुओं से क्या असर, उनके क्या फायदा मिलेगा. तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आप स्वरवेद महामंदिर जरूर आए और अपने आप से अनुभव करें देख के कि वो कैसी जगह, अद्भुत जगह है. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस चीज को फील करेंगे.
0: जी हाँ, बिल्कुल जाना तो है हमें भी. इंडिया जो है हमारे जो लिस्ट में, हम कहेंगे कभी जाएंगे जरूर. और वैसे तो जो सबसे नंबर वन आता है ना, ताजमहल देखना है, तो चलो ये भी हम डाल ही देते हैं, तो भी देख लेंगे. जी हाँ, तो नेहा बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट योग या योगा में कब से आया?
2: मैं बचपन से ही योग से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे डैड जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं एट एम्स इन इंडिया. सो स्टार्टिंग से ही उनका एक अध्यात्म के प्रति एक इंटरेस्ट रहा है.

0: अपने पेरेंट्स को देखा है कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस लाइफ देखी, बैलेंस लाइफ जी है पूरे अपने थ्रू आउट हिज लाइफ. तो दैट मेक मी कि एक इनर्ट जागृति हुई उससे कि मेडिटेशन में मुझे जाना चाहिए. और वाइल डूइंग द स्टडी और जॉब देयर सो मच स्ट्रेस इन माई लाइफ, बट वेन आई डू द मेडिटेशन इट गिव मी सो कामनेस विद इन माई सेल्फ. सो या
1: जी. और जब बात करते हैं जैसे आप बोलते हो कि व्हेन यू डू मेडिटेशन, तो फॉर अस इट्स ए टास्क. जैसे हमारे पास अगर 12 आवर्स होता है तो ऑफ कोर्स आपको जो स्लीपिंग टाइम निकालना पड़ता है, फिर आपका वेकिंग टाइम निकालना पड़ता है, फिर आपको अपने जो खाने बनाने या खाने का टाइम निकालना पड़ता है, देन यू माइट हैव रेस्ट आवर, और फिर सोशल मीडिया का भी टाइम निकालना पड़ता है. तो ये जो आप बोलते, तो हफ्ते में या डेली करना पड़ता है, हफ्ते में एक बार करना पड़ता है?
0: देखिए, ये जो है इसके बेनिफिट जब आपको मिलने लग जाते हैं तो आप रोज ही उस चीज को करना चाहेंगे ना. तो आई हैव अ लिटिल बॉय, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक अ टाइम फॉर इट, क्योंकि ये मेरे को पता है कि आई कांट लिव विदाउट इट ना. इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी. तो एवरी 10 मिनट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आई डू दैट. Or even my little boy does that too. He recites the Gayatri Mantra and he loves to do that too.
1: जी हाँ, तो आप बोल रहे हो कि आपके लिए वो 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, सो 20 मिनट्स इन अ डे आपको निकालना पड़ता है मेडिटेशन के लिए. जी हाँ,
2: मेरे ख्याल से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ. मेरे दो बच्चे हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, बोथ हैव ग्रोन अप इन ऑस्ट्रेलिया. राइट फ्रॉम द एल्डर वन वॉज 1 year ओल्ड वेन वी केम टू ऑस्ट्रेलिया एंड द लिटिल वन वॉज बॉर्न देयर. सो वट आई हैव ऑब्जर्वड इन देम इज दैट वेन दे स्टार्टेड टू डू द मेडिटेशन रेगुलरली जस्ट 10 मिनट्स, we say to them, we are not binding you that you must do it at this time. We say you start your day with 10 minutes of meditation and you end your day with 10 minutes of meditation. So basically it is like resetting your life completely. One, recharge before you start the day, so you are with clear vision, clear way you are approaching the whole day. And last, before you go to bed, you are basically cleansing yourself by doing that 10 minutes of meditation and you go to a peaceful sleep. So this is the most simplest way I can put it to you about the benefit of that. And you don't have to push yourself. And what Swamiji has made it so simple for us, whether you are able to sit on the ground or if you are unable to sit on the ground with a cross leg, you can sit on the chair. If you are unwell, you can meditate even while lying, while your back is straight, you can still meditate. So what we have seen is that कि लोग अलग अलग सबकी समस्याएं हैं और आप उनको एक रिचुअल से नहीं बांध सकते. और विहंगम योग कोई रिचुअल नहीं है, विहंगम योग कोई अंधविश्वास नहीं है. यहाँ पे यहाँ तो स्पष्ट है, अनुभव करो, विश्वास करो, तुम स्वयं आगे समझोगे ये क्या है. यहाँ हर चीज अनुभव का विषय है विहंगम योग में. तो यही चीज हम लोग सबको बताते हैं कि कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं कि आप ये करो ये नहीं करो, ये छोड़ो वो नहीं छोड़ो. आप सब चीज को करते हुए अपने लाइफ में 10 मिनट की साधना सुबह और 10 मिनट की साधना शाम को जोड़ लें और स्वयं से अनुभव करें कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आता है.
1: जी हाँ, बिल्कुल, आई थिंक आप काफ़ी सही कह रहे हो. और अभी हम देख भी रहे हैं, अभी के अगर जनरेशन की अगर बात करोगे तो इट्स नॉट इनफ. जैसे हमने शुरू में मे बी ऑफ़ या हमने शायद बात की होगी कि पहले एक टाइम था हमें जो बता दिया जाता था हम मान लेते थे, लेकिन अभी नहीं मानते ना. अभी तो जो नया जनरेशन है नहीं मानेंगे. तो इसीलिए आई अग्री विथ यू, अगर ऐसा आप कुछ बोलते हो या एक टास्क देते हो कि चलो कर लो और तुम अपना एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ का जो कल्चर, जब हम आए थे फिजी से तो यहाँ का डिफरेंट कल्चर है. यहाँ जो टीचर ना स्टूडेंट से पूछेगा ना व्हाट्स योर व्यूज, व्हाट्स योर पॉइंट. जब मैं काम कर रहा था तो मेरा सुपीरियर ना मुझसे पूछता था व्हाट डू थिंक, मैं बोल रहा हूँ कि यू नो ऐसा भी होता है. बिकॉज हमें तो सिर्फ टास्क दिया जाता था, यू टू डू
2: एग्जैक्ट
1: क्वेश्चन आपका नहीं था कि आप पूछा भी जाएगा कि हाउ डू फील. एनीवे, हमारा जो समय तो काफी भागी रहा है, वी आर ऑन काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑन टाइम. तो हमारे पास कुछ थोड़े मोरे समय बचे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे विल वंस अगेन गो बैक टू द प्रोग्राम इटसेल्फ सो दैट पीपल आर अवेयर. वो लोग अपना डायरी वगैरह मार्क कर ले, नोट कर ले. एंड देन ऑब्वियस जैसे मैंने बोला हमारा ये जो टॉपिक है इतना विशाल है कि हम नहीं कवर कर पाएंगे किसी भी हालत पे बिकॉज यू हैव टू गो बैक टू 1920 आपने कुछ बोला था तो बहुत पीछे से फिर आगे आना पड़ेगा तो व्हाट वी विल डू इज विल मेक सम अदर सेशंस आई नो आपको तो जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया बट वी माइट वांट टू कनेक्ट थ्रू टेक्नोलॉजी कभी हम फिर कनेक्ट करेंगे और हमारे पास कुछ गीत भी श्रद्धा शैल के पास होगा अप्लाई करने के लिए और साथ में जैसे मैंने मेंशन किया था हमारे पास मेगा नूट्स का जो इंटरव्यू है ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हम वो भी आप तक